दुख, वो तो भूखा है खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचा ना राहो, साचे नाम की तिल बड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई।

से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जनार त्याया जी तन टूटी जम की फांसी।

की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब कर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन

जैस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा।

इतनी सेवा प्रवान कर रही हैं, कीर्तन करते हैं, प्रहलाद जी माफी बख्शन, पाठ साहब कुलदीप सिंह जी दमटक साल वाले आप जी कथा राही जोड़ दिए, उन्होंने पास प्यार से सरण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन प्यासे दिन सरात चितवो अनदिनीत खोल कपाट गुर मेलिया नानक हर संगमीत सो कहो टल गुरु सेविया एहन सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जगत मुआ बिरथा जन्म गवाए

मन मह चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होए बिचारो तित कर गाव हो सोहेला शिव

सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे।

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हौ मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग बेदी उपाए, हर सिमरन पहे सिद्ध जती दाते, हर सिमरन नीचहु कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल उकारा, हर सिमरन मह

सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्ध वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग

सावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक कै संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुहत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग ईहा ऊहा सुहेला साध संग बिछरुत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साधक संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निहतरै

देखा सिमरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बर सिंह ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश

परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत, ब्रह्म ज्ञानी अह बोते आगत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख छाए निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।

रस भोगी। कई कोट पंखी सिर पे उपाय, कई कोट पाथ ब्रिख निबजाय। कई कोट पावन पानी बैसंतर, कई कोट देश पुह मंडल। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर।

सोई करावे। जिस कै हाथ होए न सब किस ले जो तिस भाव सोई करे। अनजानत बिख्या महरा चे जे जानत अपने आप बचै। परमे भूला दे दिसता।

गर्भगलयस्पदी जिसके अंतरराज विमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत।

छूटै सहस खटै लाख कोठ धावै त्रिपत नावै माया पाछे पावै अनक भोग भिख्या के करे नह त्रिपतावे खब खब मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ ब्रिथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण क्राम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाप।

0: प्रवचित जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाभ देह तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृत ताकि बानी एक नाम मन माह समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी।

अहंकार, असंख्य जाप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग योग मन रहे उदास, असंग भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती, असंग दातार, असंग सूरम भगसार, असंग मोन लिवलाए तार।

गावन जती सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोड़िया मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ पयाले। गावन रतनु पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले। गावे जोत महाबल सूरा गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल पर भंडा कर कर रखे तारे। सही तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चेतना आमन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी हो सी जाय ना जासी रचना जन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जन उपाई। कर कर वेखै कीता आपना जेब तिसदी वड्याई। ज्योत सुभाव है सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात शाहो शाह पात साहिब नानक रह रजाई। मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करे।

अनासन आजान बाहो शाहान शाहो राजान राजपानान पान देवान देवा महान इंद्रानंद्रबालान बारंगारंगालान काल अनभूतंग आभा भंगत मित अपार गुणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय निगम अद्वित प्रचंड मित गत अखंड आल स कर्मा दृश्य धर्म सर्वापर्णाढ्य आन दंड बाढ़ चाचरी शांत द्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंगरिंद्र नामे अगामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी शन न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश्य अधिश्य अदृश्य अग्रस्य

अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं तर्वं सर्वं कर्वं सर्वं कर्वं सर्वं तर्वं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अघा स्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्तर न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं श्री कै मित्तो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद। के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मे सुन सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग कुसन चराग के कामल करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी दहद के राज ग्रहिंद करीमल कमाल के सुनल जमान है करीमल खराज है करीबल निवाज है हरिफुल शिखन है रासुल फिखन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल ग्रीम है रजाय ग्रहीम है समस्तुल जुबाह के साहिब करा के नरकंग प्रणासंग बहस्तुल निवास है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास साहब के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुलगमन है मेसुलवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अदीजा अजीजा परंग परमीश है समस्तुल आदीश है आदेशुल अलेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है क्या चलंग प्रकाश है के मित्र सुभाष है के अजब स्वरूप के मित्र विभूत है के मित्र प्रसाह के आत्म प्रवाह है क्या चलंग अनंग के मित्र अभंग मधुभार छंद त्व प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सुलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुपमनाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिशंड जलथल महंद सुसुभ्यंत अनुपमनाथ तरतुरा साजान बाहु एक सदाहु ओंकार याद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चरनाम अंशात अजना बात अंचात अनरंज बात अंटुटमंडार अंठट अपार आठ धर्म अत ठीठ कर्म अनवरण आनंदाता महंतर बोल मना छंद त्व प्रसाद। करुणालय है अर्काल है कलखंडन है महमंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वबारण है तृतगय तरण है जगे कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है।

पूर्ण हुए हमारी आशा तो और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अपरनात्या हूँ जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उभरया है मरण काल का त्रासन भरया है। वो जो सदा हमारे पच्छा श्री सुजू करे हो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे।

कौन सिमट पयो शंकर एक ऐठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणगाता जय स्तुता शरणी।

0: वॾी वॾे जा वॾा लाओ, वॾी वॾे जा सच ने आओ, वॾी वॾे जने चथाओ, वॾी वॾी जाणे लाओ, वॾी वॾे बुझे सब भाओ, वॾी वॾे जा पुछना दात, वॾी वॾे जाया पिया, नानका नकते जाए की ताकरना सर्व जाए महला दूजा।
1: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना पाणे कढ ले, एक ना

नानक जी उपाय कह लिखना वे धर्म बहलिया ओथ है सचे ही सच निबड़े चुनवा कडे जजमालिया थाउ न पाइन कूड़िया मुंह काले दोज चालिया तेरे नाय रते सेजड़ गए हार गए से ठगड़ वालिया लिखना वे धर्म बहलिया।

0: चित करते कारण किया।
1: सो जान है करतार पौड़ी,
0: फिर सतगुरु के ने ना पायो, फिर सतगुरु के ने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगट।

0: नानक पे शरीर का एक रात भी रतुआ हो जुग जुग पेर उठाई है ज्ञानी बुझताए
1: वाह
0: साजुरा संतों का तर्मग रतुआ हो सतुरा

0: चलसी जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साई मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है।
1: तुसी तबला बजाओ।

विसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए।

मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द।

संत सरनी लाग चरनी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कुमावै एह करनी सार। आप छोड़ सब होए रेना जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां। दुकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना। दोह ते रहत भगत है कोई बिरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू बड़ पुरख सजाना राव।

Anda paye gorra kese ubre sache syo lev lae har jiyo shabd pachaniya sach rate gur vak tet tan mail na lag gayi sach kar jis otak nadar kare sach paye bin na vai kya saak jinne sach pachaniya se sukhiye jug char ho main trisna mar ka sach rakhya aur tar जग मैं लाहा एक नाम पाया गुर विचार साचो वखर लादी है लाभ सदा सच रास साची दरगा बैसई भगत सची अरदास परसों लेखा निबड़ राम नाम परगास ऊंचा ऊंचा आखिया कहो न देखिया जाए जह देखा तै एक तू सतगुरु दिया दिखाए जोत निरंतर जानिए नानक सहज सुभाए श्री राग महला पहला।

अवगुण त्याग समाया गुरमत पूरा सोए रहाओ बिन रासे बापारिया तके कुंडा चार मूल न बुझे अपना बस्त रही घर वार बिन बखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा एन सनौतना परखे रतन विचार बस्त लह कर अपने चलै कर जसार वण जारिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाईऐ जे मेले मेलनहार मिलिया होए न बिछड़ै जिस अंतर जोत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिन्ने आप पछाणिया घर मह मैल सुथाए सच्चे सेती रत्या सचो पल्लै पाए तेरे भवन सो प्रभ जानिया साचो साचा नाहे सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बलाइया सो पिर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ बन मैं भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नाब हो भूली जे फिरा फिर फरिया हो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर घर

मन रखाए ऐसा सतगुर जे मिलाए तां सहजे ले मिलाए कस कस वटी लाई परखे हित जित लाई खोटे ठा

आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मलाए जी जंत ए क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे बड़ियाई आपे सेव कराए देख कुटंब मोहे लोभाना चलदिया नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सखा हर जीओ मेरा अंते होए सखाई पेई अड़ जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काही हर सुख दाता मन नहीं बसिया अंत गया पछताई पेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन बसाया अनदन भगत करै दिन राती होमै मोह चुकाया जैस स्यों राता तैसो होवै सच्चे सच समाया आपे नदर करे पौ लाए गुरसब दी विचार सतगुर सेवै सहज उपजै होमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन बसै सच रखिया और तहार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हों मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हों सरबल हार जाऊं अपने मन चित कह कहाए बिन गुर आप न जाए हर ज्यो भगत बछल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमाव दे जम डंड लगै तन आए जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिबलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूर्व करता लिखिया तिन गुरमत नाम समाए राह बिन सतगुर प्रतीत न आवई नाम न लागो पाओ सुपने सुख न पावई दुख में सब समाए जे हर हर कीचै बहुत लोची है कीर्तन मिटिया जाए हर का भाणा भक्ति मन्या से भगत पै धर थाए गुर शब्द दड़ावे रंग स्यों बिन कृपा लया न जाए जे सो अमृत नीरी है भी बिख फल लागे ताए

संत सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सबनी जाई रहा। तुर की बाणी आई

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदा राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे ना दे अनेक असंखा। किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परी सों कही आए, किते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दरनाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग माछ प्याले। गावन तुदनो रत्न उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोधमा बलसूरा, गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतन आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है। पी हो सी जाए ना जासी, रचना जी नरचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साह पात साहिब, नानक रह नर जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा, आखे सब कोय केवड़ वड्डा डीठा होए।

पवै। तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल। दियो सजण आसीसड़िया ज्यो होवे साहब स्यो मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिया नानक से दयावान। आगासा महला पहला छे घर छे गोरा छे अपदेस। कर कर एक गुर गुर को वेस्या नेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो घर रख वडाई तोय राव। विशेषया कड़िया पैरा तिथि वारी माँ हुआ सूरज को रोते अनेक। नानक करते के केते वेस। राग तनासरी माला पहला गगन में थाल राव। चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप माल्याल लो पवन चवरो करे सुगल बनुराए। फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना। तेरी आरती अनाहता सो द्वाज अंत भेरी राव। सहसताव नैन नैन नैन है तोहे को। सहस मूर्त न नायक तोही। सहस पद बिमल नानिक पद गांध बिन। सहसताव गांधे व चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दह चानन। सब मैं चानन होए गुरसाखी। जोत प्रगट होए जोत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मुकुर आंद लोभे तुम मनवाण दिनों में आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग कोय जाते तेरे नाम वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है।

0: नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तुरे।
1: श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है एह।

बिन संगत साधना थरा पिया बिना में दुख संताप हर जाप जीर छुटी है गुरमुख जी ने आप तन मन गुर पे बेच अमन दिया सरनाल त्रिपवन खोज टंडो लिया गुरु खोज निहाल सदगुरु मेरे में लाया नान सो प्रवनाल श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेख सा गिरास अंतर गुरमुख तू वस ज्यो पावे त्यों निरदास जिया रे राम जोत मन मान अंतर लागे जल बुझे पाया गुरु ज्ञान राहु अंतर के गत जानिए गुरु मिलिए संकेतार मोया जत कर जाइए तत जिम दया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाइये गुरु विचार अन

जीराण हपे बंजा डोबणी रोवा चिणी बाड़की न सुनाय गोरी है अपन कन्नी सोय लगी आवे सो रैब नितन पैया होए नानक सुती पैये जान विरति सन गुणा गवाए गंठड़ी अवगण चले बन श्री राग महला पहला कार दूजा दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहेब रब रहा पर पूर रहो आपे माछे माछले आपे पानी जाल आपे जाल मन कड़ाए आपे अंदर लाल आपे बहुत रंगला सके मेरा लाल नेत्र वै सुहागन देखा मारा हाल परुणा नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख विकास श्री राग महला पहला करती जाए तन धरती बीज कर्मा करो सरल पाओ सारंग पानी मन के रसान हर हृदय जमाए लयो पाव सपद निर्बाणी काहे गर्भ सुमुड़े माया पित सुत सगल काल तर माता तेरे हो नंत सखाय राव बिखे बिकार दुष्ट किरखा करे न तज आत्मा हो त्याई जप तब संजम हो जब राखे कमल बिग स माते असरमाई बिसप तारो बासुरो संग्रह तिन खोड़ा नित काल सार

राहु मखनेन्दाय आकादिनराल परकरचो हिरि जोहि निचनार काम क्रोतन वसेचनाल तान गुरु प्रहा करतार फाहि सुरत मलुकी वेश ठगवाड़ा ठगी देश खरा

तेरे पास, आपे नेड़ा दूर, आपे ही आपे मंद में आनू, आपे वेखा सुने, आपे ही आपे कुदर करे जान, जो तुझ पावे नानका हुकम सोई परवान। श्री राग महला पहला घर चौथा कीता कहां करे मन मान दे बनहारे कै, हाथ दान पावे दे न देई सोए, किते के कया क्या होय। आपे सच पावे तिस सच, अंधा कच्चा कच नी कच रहो, जाके रुख बिरख्या रहो, जेहि धरते आओ तिन नाओ। फुल भाओ पल क्या पाया, बिजा पे खाए कच्ची कंध, कच्चा विचराज मत रूणी फिका साध। नानक आने आवे रास, बिनलावे नाही साबास। श्री राग महला पहला घर पंजवा, छल छलाई न छलाए, न घाउ घटारा कर सके, ज्यो साहिब राखे त्यों राय। सलोभी का जियो टल, पले बिन देल दीवा क्यों जले राहो। पोथी पुराण कमाइए, पोवटी अत तन पाइए, सतबूजन आन जलाइए, इहो तेल दीवायो जले। कर चरण साहिब तौ मिले रावत, तन लागे बाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया। सब दुनिया अपने जानिया, विच दुनिया सेव कमाइए, तंदर के बैसन पाइए, को नानक बाण लुड़ाइए। श्री राग महला तीजा, घर पहला इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। हो सतगुरु सेवे अपना, एक मन इक जित पाए, सतगुरु मन त्याई, सतगुर त्याईए नाओ, मंगिए नामे सहज समाए। हो सतगुरु से भी अपना, एक मन एक चित पाए, सतगुरु मन कामना तीर्थ है, जसन दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छे सो फल पाए। नाओ त्याईए नाओ, मंगिए नामे सहज समाए, मन मेरे हरा चाक तिक जाए, जिन्हें गुरमुख चाखिया सहज रह समाए राओ। जिन्ने सतगुरु सेव्या दिन पाया, नाम निधान अंतरा, हर रस राव रहा चुका, मन बिमार हृदय कौन प्रकाश्या, लागा सह ध्यान, मन निर्मल हर राव रहा पाया, दर गय मान, सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार। हम ममता मार के हर राख्या अवतार, हो तिन के बलियार ने जिन नाम में लगा प्यार, से सुखी है चौं जुगी जिन नाम खोटिया पार। गुर मिलिया ना पाए चुके मो प्यास, हर से तिन मंद रब रिया करे मायो दास, जिन नारिका सा दया तिन सा तन सद बलिहारे दास।

मर्वता माहे समाय मान रे ग्रह ही माय दास सत संयम करणी सो करे गुरमुख होय परगास राहो गुरु क्या शब्द मन जीत्या का तम गुद करे मैं पाए हर का नाम त्याई सत्संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रिया भोग करे नवखण राज कमाए बिन सगर सुख न पाइए फिर पर जो ने पाए हर हार खंड जने पैरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे दसद फिर ना तिल न तमाए जो प्रभ पावे सोती अव न करना जाए दर नानक जीवे नाम लै हर देव सहज सुभाए सुराग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोय गौरम कार कमावणे सच कर प्रगटोय अंतर जिस कह सच वस सच सच सोए सच मिले से ना विछड़े तिन करवासा होय मेरे राम हर बिन अवर न कोय सगर सच परम निर्मला सत मिलावा होय राव सबद मिल सो मिल रहे जसनो आपे लय मिलाय दूजे पाए को न मिले फिर भरिया वह जाए समय एक वर्त को रहा समाये जस नो आप दयालो सुगुरमुख नाम समाये पढ़ पंड ज्योत की वाद करें विचार मत बुद्ध पविना बुद्धि अंतरलो विकार लख चौरासी परम दे परम ब्रह्म खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मिटना हार सगुर की सेवा गाखड़ी सरदी दे आप गवाय शब्द मिले था हर मिले सेवा पैसा थाए पारस परस पारस हो ज्योति ज्योत समाय जिनको पूर्व लिखिया तन सगुरु मिले आय आय मन पुखा पुखा मत करें मत करें पुकार लख चौरासी जिन श्री सबसे दयाधार निरपुसदा दयाल सुबन करदा सार नान गुरमुख बूझी है पाय मुख द्वार श्री राग महला तेजा जिन सुन के मनिया तिन करवास गुरमति सलाह साचर पाया गुणतास शब्द रथ से निर्मल हों साध बले हर जास हृदय जन के हर वस तत कट है प्रगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुरमस्त जिन को लिखिया सुगुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट वस पार पूर गुरमत जिनी पछाणे से देखे सदा हरूर जिन गुण तिन सद मन बसे औ गुणवंत अधूर मन मुख गुण तय बाहरे बिना में मर्द चूर जिन गुरमुख जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्यार सोए अंदर भक्ति रत्या मन तंदर मल होए कूड़ा रंग संभ काबिन जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रकाश है सदा सदा थिर होए ए जन पदार्थ पाए के अर नाम न चेते ले बलाए पख स्या रहना नहीं अगे ठौर न पाए ओ वेला तनाव अंत गया पछताए जस नदर करे सोबरे हर से तिल बलाए देखा देखी सब करे मन मुख भोजन पाए जिन गुरमुख हिरदा सोदा से पई तिन थाए हर गुण गावे हर नित पढ़े हर गुण गाए सुमाए नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए

सत्य दरबार होय अमृत पीवे सदा सदा सत्य नाम प्यार भाई रे गुरमुख सदा पद होय हर हर सदा त्याय मरो में कड़ा तो होय राव मान मुख नाम न जाने बिना में पात जाय शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए विष्णा के कीड़े पवे चो विच विष्णा से विष्णा माय सुमाय तिनका जन्म सफला जो चलें सगुर पाए कुल उधारा अपना कुल आधार है अपना तन जने दी माय हर हर नाम त्याई है जसन कृपा करे रदाय जिन्ने गुरमुख नाम त्याया विचों आप गवाए ओय अंदरों बारो निर्मल सच्चे सच सुभाए नानकाय से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरु पूछ करे व्यापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखरा नाम आधार गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता तुट भंडार पाई रे सुमन को समझाए ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम से आए राहो हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुविधा बोल खुआर सो जन रलाया ना रल जिस अंतर भवे एक विचार सो सेव करे आखिए जो हर राखे उतारे

जाए। लक्ष्य राशि तरस दे जिस मिले सो मिले हरे आए, नानक गुरु कर पाए सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरु पाया जाए। अंधे नाम त्याए सज नाम समाए, अंदर रचे हर साई सिंह रसनार गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे पाए, गुरु सुनाए सुख लाए। अंधे नाम त्याए राव साचे मैल न लगे, मंदिर मल हर त्याए। गुरुमुख शब्द पछाणी अर अमृत नाम सम

पारे तातुर्बा जी पल चरह नौर वार न पारे गुरु जब तंजमी हर कह नाम प्यार हो गुरु सदा से आइये एक नाम करतारे नानक नाम से आइये सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे आपे आपे राग उदासी न होए शब्द न चिन्ह सदा दुख हर दरगह पात खोए हमे गुरु खोये नाम रतय सुख होए मेरे मन ऐन सहपुर रही नित्यासा सदगुरु से मोह परज ले करे मैं उदासा राहो गुरु कर्म कमावे भिक्षे हर बैराग आनंद ऐन भगत करे दिन राति हमे मान चंद वड्डे पास संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम वसाई अंतर लागन ताम समूले विचों आप गवाए नाम निधान सतगुरु देखा लिया रस पिया गाए

बेन गुरु मैल न पाए नाम न प्राप्त होए अच्छा सतगुरु लोड़ लो जे तू पाए सच सोए असर संगार है सुख वसै जो तु पावे सोए दे सतगुर कर जाने ते हो देहा सुख होए हो सह समूले ना ही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति सद मिलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ भी ख्यालो बाण सेवा करे भी डाड़े अपना धर्म गवा में बुझे नाही आंदन दुख बयाने मन मुख आंदन चेत डो मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर शरणाई गुरु का शब्द अंतर वसा ता हर विसरना जाई रावे म शरीर माया का बतलाव जाऊं मैं दृष्टि पाई आवण जाना जमण मरना मन मग पत गवाई सगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सगुर की सेवा तो खाली जो इच्छे सो फल पाए जात सत तप पवित्र शरीर हर हर मन वसाए सदानंद रह दिन राति मन प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की चरण आगते हों तेने कह बल जाओ दर सच्चे सच्ची वड्याई सहज सच समाओ नानक नदरी पाई गुरु को मेल मिलाओ श्री राग महला तीजा मन में कर्म को मामने जो दोहा गंता न सिगार सेजे कंत ना वे नतन तो खुआर फिर का मेल न पावे न दिथे करबार पाई रे एक मन नाम से आए संता संगत मिल रहे जाप राम नाम सुख पाए राव गुरम सदा सुहागणी पर राख्या अवतार मिठा बोले निव चले से देर में पतार सुभवंती सुहागणी जिन गुर का हेत अपार पूरे पास सात गुरु मिले जा भागे का उदो होए अंतर दुख प्रम कटिए सुख प्राप्त होए

भक्त ना पाइए दिलोचा सब को राहो। लाख चौरासी फेर पया कमन दूजे पाए बिन गुरनी दिन आवे दुखी रहन बिहाए बिन सब

small. Nam Rata Sandarbala Gurkasai Savai Martan Rata Rang Sivarasana Rasana Rasai Nanika Rangana Uttare Jo Haratur Chodi Alai Sri Raghma Latida Gurmukh Kirpa Kare Bhagat Kijay Bin Guru Bhaktana Hoi Ape Amilave Bhujata Nirmuro Veso Yardyo Satya Sati Vani Shabda Milava Hoi Pahire Bhagat Hinkai Jagaya पूरे गुरु की सेवना किन्नी व्यर्था जन्म गवाया राव अपे तक जीवन सुखदाता अपे भक्त मिलाए जी जनते के अवतारे क्या को आग सुनाए गौरमुखी अपे देव डाई अपे सेव कराए दे कुटम मोल बाणा चल दिया नाल न जाई सगुर सेव गुण ने दान पाया तो ये क्यों ना पाई हर प्रभु सखा मित प्रभु मेरा अंत हो सखाई अपने मन दिखाए कहा बिन गोरे आप न जाई

सब समाये आप देता पाइये और करना किथु न जाए देवण वाले के हथ दाता गुरु द्वारे पाए देहा कि तुंते आओ आजेहे कर्म कमाए जात सत संजम नाम है बिन नाम है निर्मल ना होए पूरे पाग ना मन उसे सब मिलावा होए नानक सहज ही रंग वर्तदा हर गुण पावाए सोए श्री राग महला तीजा काया साध दैवरताप करे बिचो में ना जाय अध्यात्म कर्म जे करे नाम ने कभी पाए गुर के सब जीवित मरे हर नाम वस्य मन आए सुन मन मेरे पास सतगुरु शरणा गुरप्रसादी छुटी है बिग भाव शब्द गुर तरना राव त्रै गुण सभा ताता दूजा भाव विकार पंडित पड़े बंधन मोह बादा ने बूझ जाए बिख्या प्यार सतगुरु मिलिया त्रिकुटी छुटा है चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाई है चूके मोह गुबार सद मरे मरे थाई उदरे पाए मुख द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करता रे मनवात सबल छड़ना कितै उपाय दूजे पाए दुख लाइंदा बहुत ही दे सदाय नानक नाम लगे से उभरे में शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुरु पाई हर नाम दे दृढ़ाए बिन गुर के ना पायो बिरथा जन्म गवाए मन कर्म को मावने दरगा मिले सदाए मधुर दूजा पाओ चुकाए

संसारे सच्चा सवदना सेवे सबका सुवर्ण हर मर मेरे सदा हर वेखा दूर जन्म मन दुख पर हरे सवदरिया पर पूर रहो सच सरण से सच्चा सच्चा नाम उदार सच्ची कार कमावनी सच्चे नाल प्यार सच्चा सा वर्तदा कोई ना मिटना हार मन मुख महल न पाए नी कूड़ मुठे कुड़ियार हमें करता जग मा गुरबिन घोरे अंधार माया मोह विसारे सुख दाता दातारे सतगुर सेवै तय उबरे सत रखै उरतार कृपा ते हर पाइए सत शब्द विचार सतगुर सेवा निर्मला हमें तद विकार आप छोड़ जीव तुम्हारे गुर कै शब्द विचार तंदाता उतरा गए लागा सच प्यार सच रत मुख उजले ते सच है दरबार सगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इस नान दान दे तगर दूजे पाए गुआर हर जू अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हेत अपार श्री राग महला तीजा किसों सेविका जप करे सतगुरु पूछो जाए सतगुरु का भाणा मन ले विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी ना वसे मने आए नामे हित सुख पाए सच शब्द सुहाए मन मेरे अंदन जागर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत राहो मन किया इच्छा पूरिया सुदरिया भरपूर पै पाए भगत करें दिन राति हर जो वेख सदा दूर सच्चा शब्द सदा मन राता ब्रह्म गया शरीरों दूर निर्मल साय पाया सचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सुते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पहचाण्यो सुपना गया विहाय।

हार निर्मल सदा सोना सब सुवर्ण हार राव सच्चे शब्द मन मोहिया प्रव्यापे ले मिलाय अंधना में रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति प्रभु जावदा बिन सुगुरु भोजना पाए जिनको पूर्व

राहो। हरे को दाता व्रत दादु जावना को ए सब सलाहे मनमस्तय सहि सुख हो सब नदरी अंदर वेखता ज पावता दे हो मैं सभा गणता गणता नो सुख नाहे बिकी कर कमा।

जाए अपना प्रेरणा बचाने क्या मंदिर सजाए जिन्हे सखी कंत बचाने तिन क्या लागो पाए तिन्हें जैसे थी रहा सत्संगत मेल मिल।

सच समाय से संयासो अग्नि जन खाओ नजर करे खसम पछाण अपना तन मन आगे दे कार बार पाए अपना मैं दूर करे नानक शोभा बंती आसो अग्नि अंदर भगत करे श्री राग महला तीजा एक फिर रावे अपना हो कह दर पूछा जाए सगुर सेवे भाव कर मैं फिर दे मिलाए सब।

धोती के बिना उतरे जे सौ तीर्थ नहाए। बहु विध कर्म कमावणे दूणी मल लागी आए। पड़े मैल ना उतरे पुछो ज्ञानी आन जाए। मन मेरे अर्ग गुरसरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर सके मैल ना सके तो हेरा मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए।

जय पचातन सजना प्रभु के तबेद मिलाय मिलाय मेरे सदगुरु मैं तुझने वरना को ए हम मूर्ख मुगल शरणागति कर कृपा मिले हर सोए राव सतगुरु दाता हर नाम का प्रभु मिला वै सोए सतगुरु हर प्रभु जया गुरु देवड़े वरना कोय गुरु शरण आई टपवा कर दया मिले प्रभु सोए मन हठ किन्नै ना पाया करो पाव थके सब को ऐसा स्याणम कर रहे मन को रंग ना होए कूड़

आपे मोती उज्जल आपे भगत बसीठा गुर के शब्द सलाहना घट घट डीठिया ढीठ आपे सागर बोथ आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गोबार असदर करता देखिए और केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू और बंदी धंधे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

ना लगई सच घर जैसे उताक नदर करे सच पाईए बिननावे क्या साख जिनी सच पछाण ऐसे सुखिए जुग चार हो मित्रसना मार कह सच रख्या और धार जग में लाहा एक नाम पाईए गुर विचार सच वखर ला दिए लाभ सदा सच रास साची दरगह वैसई साची दरगे वैसई भगत सची अरदास पत स्यों लेखा निबड़े राम नाम प्रगास ऊचो ऊचा ऊचो आखिए कहो न देखिया जाए जय देखा ता एक तू सतगुर दिया दिखाए जो निरंतर जानिए नानक सह सुभाए श्री राग महला पहला मछली जाल न जानिया सर खारा सगाओ अत सियाणी सोहनी क्यों की तो वेसाओ कीते कारण पाकड़ी काल न टले सराओ भाई रे सिर जानो काल ज्यो मछी त्यो मानसा पवे अचिंता जाल राव सब जग बाधो काल को बिन गुर काल अपार सच रते सी उबरे दुबदा छुड़ विकार हाओ तिन कहे बलहारण दर सचे सचे आर चन ज्यो पंखिया बाली जाली बदक हाथ गुराखे सिबरे और फाथे चुगे साथ बरनावे चुन छुट्टी है कोहे ना संगी साथ सचो सचा आखिए सचे सचा थान जिनी सचा मनिया तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिलाए सुख पाया जम दूत मोए बिख खाए नावे अंदर हौ वसा नाओ वसे मन आए बाज गुरु गुबार है बिन सबदे बूझ न पाए गुरमती प्रगास होए सच रहे लिवलाए तिथे काल न संच रहे ज्योति ज्योत समाए तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार गुर सबदी सुलाई अंत न पारा वार तिथे काल न अपड़े जिथे गुर का सबदे अपार हुकमी सबे उपजे हुकमी कार कुमाए हुकमी काले वास हुकमी सा समाए नानक ज्योत सुभावे सोथिए ना जनता वस किश नाहे श्री राग महला पहला मन

क्यों कर सुचा होए। बिन अब शब्द न मांजिए, साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के, फिर रलिया रस मानसी, साच शब्द सुख नेरा। फिर परदेसी जे थी है, धन वाडी चोरे, ज्यों जल थोड़े, माछली करण पलाव करे। फिर भावे सुख पाइए, जाको नदर करे, फिर सोलाही अपना, सखी सुहेली नाल, तन सोहे मन मोहया, रती रंग निहाल। शब्द सवारी सोहनी पर रावी गुण नाल, कामन कामना आवी खोटी अवगण यार, ना सुख पीए सौरे, झूठ

सो कित साद पिरके कामने आवई बोले फादल बाद दर कर ढोई ना लै छुट्टी दूजे साध पंडित वाचे पोथिया ना बूझे विचार अनको मती दे चले माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे कहनी शब्द सुसार के ते पंडित जोध की वेदा करे विचार वाद विरोध सलाने वादे आवन जान बिन गुर कामना छुटसी कहे सुन आख वखाण सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नाम विछोड़ा हुए श्री राग महला पहला जाप तब संयम साधिए तीर्थ कीचे वास पुन दान चंगे आई आ बिन साचे क्या तास जेहा राधे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुख होए अवगुण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहा बिन राशी व्यापारिये तके कुंडा चार मूल ना बुझे अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़े आर लहंस नौतना परखे रतन विचार वस्त लहे घर अपने चले कारज सार वणजारिया स्यों वणजकार गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाईए जे मेले मिलनहार मिलिया मिलिया होए ना विछड़े जैसे अंतर ज्योति अपार सचे आसन सच रहे सचे प्रेम प्यार जिनी आप छाणिया घर मह मैल सुथाए सचे से तीरते आ सचो पल्ले पाए

बिन प्यार, गुरमुखी अंतर रवरिया बगसे भगत भंडार रा। रे मन ऐसी अर स्यो प्रीत कर, जैसी मछली नीर ज्यो अदगो तिखा सुख कणो, ज्यो अदगो त्यों सुख कणो।

बिन जल कमल सोनाथिए, बिन जल मीन मराए, नान गुरमुख रस मिले, जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला। डूंगर देख डरावनो पेयड़ डरियास, उच्चो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित तास। गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली त्रियास, भाई रे भवजल बिखम डराऊ।

सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुआय गुर राखे से निर्मलाय शब्द निवारी पाए नानक तरिये सच नाम सिरसाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह मन मुख भौजल पच मुए गुरमुख तरे अथाह